0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। सामेईन और नाजरीन, आप रेडियो हम वतन की उर्दू नशरियात बराह रास्त रेडियो वेस्टर्नब्रो के स्टूडियो से सुन रहे हैं। आप ये हमारा प्रोग्राम नई दुनिया फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं। सामेईन नाज़रीन, बिस्मिल्लाह करां प्रोग्राम लेके आपका मेज़बान रज़ा मुस्तफ़ा हाज़िर है, और मेरे साथ स्टूडियो में हम हमारे एक नए मेज़बान को होस्ट, हमारे एक्सपर्ट होंगे जनाब बाबा फूका साहब। बाबा फूका साहब से भी आपकी जो है वो मुलाकात करवाएंगे कि ये बाबा फूका साहब कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और इस प्रोग्राम का जो है वो क्या मकसद होगा। तो ये सारी बातें जो हैं हम आगे चल के करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम अपने इस प्रोग्राम बिस्मिल्लाह करा में खुशामदीद कहते हैं, और सामेईन नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बाबा फूका साहब उर्फ डेनिश, और ये जनाब यहाँ डेनमार्क में रहते हैं। आप में से बहुत कम लोग जो हैं बाबा फूका साहब से तारुफ है, और मेरा खुद जो है बड़े कम अरसे में इनसे मुलाकात हुई, लेकिन बाबा फूका साहब की जो फूकें हैं वो ऐसी हैं कि बड़ा कमाल करती हैं। तो सामीन नाज़रीन, बाबा फूका स्टूडियो में हैं और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कि हमारा ये प्रोग्राम जो है ये महीने में एक से दो मरतबा हुआ करेगा, और इसका नाम होगा बाबे फूके दिया फूकां, यानी कि बाबे फूके की फूक जो है वो इसका नाम होगा। तो प्रोग्राम में हम बाबा फूका साहब को खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा फूका साहब।
2: वालेकुम सलाम जनाब पीरो मुर्शिद।
1: बाबा फूका साहब सुनाएं, आप कैसे हैं?
2: शुक्र अल्लाह ताला का करम।
1: मेरे ख्याल में आपके आते ही जो है ना वो माइक की आवाज जरा गुम हो गई है। मैं सामीन नाज़रीन एक मिनट दीजिएगा।
2: बड़ी बरकत ना लाया फिर, बड़ी बरकत ना लाया मैं बैठे, सारा कॉन्फिडेंस ही लो हो गया।
1: जी बाबा जी, कोई थोड़ा सा जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का पीरो मुर्शिद।
1: जी बाबा जी, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। और सामीन नाज़रीन आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम जो है बाबा फूका दिया फूका जो है इसका होस्ट मैं रज़ा मुस्तफ़ा हुआ करूँगा, और बाबा फूका साहब जो है मेरे को होस्ट और हमारे एक्सपर्ट और हमारे बाबा जी, इनसे हम जो है वो हर जो मर्ज है, हर जो हमारा प्रॉब्लम होगा उस पे हम जो है वो फूक मरवाएंगे। तो बाबा फूका साहब, आप अपना थोड़ा सा तारफ करा दीजिएगा कि आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं?
2: नाम सर आपने बता दिया, नाम मेरा डैनिश है, पैदाइश मेरी रावलपिंडी की है, उसके बाद जो है बचपन हमने खूह में गुजारा है, तो आजकल हम चिट्टापुरा रह रहे हैं बस, यहाँ के लोकल लोग हैं हम।
1: अच्छा, पाकिस्तान रावलपिंडी से आप सीधा यहाँ डेनमार्क खूह में आए?
2: हाँ जी, सीधा खूह जी, सीधा खूह।
1: तो चिल्ला वहीं पे कटा है?
2: चिल्ला मैं कहना है, जो कटिया किसी ने भी कटिया।
1: अच्छा सामीन, आपको ये भी बताते चले कि ये प्रोग्राम जो है वो उर्दू में भी होगा और डेनिश में भी, पंजाबी में भी, यानी सारी जबानें जो हैं ये बाबे फूके की फूकों में जो है ये बड़ा दम है, देख लें हम सारी जबानें जो है वो मिक्स कर रहे हैं। तो बाबा जी, आप रोज़मर्रा में क्या करते हैं?
2: रोज़मर्रा में जी सर वही जो लोग करते हैं, उसी ड्यूटी शूटी करते हैं, अपनी रोज़ की रिज़क कमाते हैं, साइड में अपना ये थोड़ा सा बिजनेस रखा हुआ है, किसी बंदे को तकलीफ हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो चलो उसको फूक शूक मार के उनके भी मसले हल कर देते हैं।
1: बाबा जी कितने अरसे से फूके मार रहे हैं?
2: ये कोई 5-6 साल हुए हैं मुझे जो है ना आमद हुई थी इस चीज़ की कि भाई जो है ना फूका कोई असर है, एक दो बंदे आए, उन्होंने कहा जी वाह आपने फूक मारी, मैं तो उड़ के कंधे बजे हैं। मैं कहा चलो
1: ये जरा फूक मारे हाँ माइक से, हमारे जितने सामीन सुनने वाले हैं देखने वाले हैं,
2: ना करने सारे ऐसे ज्यादा ना करने, फूक मारी ये नॉइज रेडियो समेत लोग उड़ जाएं। आपको पता है मैंने बताया आपको, मैंने पीछे थोड़ा सा आपको बताया था कि फूक में बहुत जोर है, तो लिहाजा ज्यादा ना करें।
1: नहीं आप जरा कम जोर से मार लेना।
2: चलिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीरो मुर्शिद की माननी पड़ती है।
1: ले जी सामीन आप पे हमने फूक मरवा दी, अल्लाह ताला आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं वो आसान करे,
2: आमीन आमीन।
1: और आपको कभी कोई दुख ना आए, हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहें। और जब भी आप बाबा फूका को देखें या सुने तो यकीन करें आपको वैसे ही हंसी आ जाएगी।
2: क्यों जी मेरा मुंह ऐसा है या आप कैसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं?
1: नहीं बाबा फूका साहब मेरी क्या मजाल के मैं इस तरह कह सकूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग देख के जो है वो
2: वाह वाह। देखिए ये बात हुई ना, ऐसे ऐसे बात करें ना आप, जाती ना ना करें
1: एक और सामीन आप मेरे कम बोले को ज्यादा समझें, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी बाबा वापस आते हैं। अच्छा आप कह रहे थे कि आप रोजमर्रा में जो है वो जॉब करते हैं।
2: बिल्कुल
1: हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: तो साथ में ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं।
2: जी बिल्कुल, घर में गद्दी रखी है,
1: कार गद्दी रखी है,
2: कार।
1: ते बच्चे कितने ने?
2: दो अल्लाह दे शुक्र, जुड़वा अल्लाह ताला ने दिते ने, एक बेटा है तो एक बेटी,
1: माशाल्लाह
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: अल्लाह ताला उन्हां दी उम्र लंबी करे,
2: आमीन आमीन। उन्होंने भी फूका मार मार के इंसान बनाया।
1: आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। और ये हमारे प्रोग्राम का ये फॉर्मेट हुआ करेगा, जिस तरह भी हम गपशप कर रहे हैं, हंसा मजाक हो रहा है, आपने हमें ना बिल्कुल सीरियस नहीं लेना।
2: सीरियस नहीं लेना जी, इस प्रोग्राम का महज मकसद सिर्फ कॉमेडी है, लोगों को हंसाना है। जो सारे पाकिस्तानी लोगों ने ब्लड प्रेशर हाई हुए ने, उन्होंने ब्लड प्रेशर लो करना, शुगर वाले की शुगर हाई है लो करना, किसी चीज़ की फूक मरवानी मरवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, हर चीज का हल है।
1: अच्छा वैसे हमारे पाकिस्तानियों में लोगों को शुगर बहुत है, उसके लिए भी फूक मार
2: दें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह तो को 13 तू 7 ते चली गई है, दो बंदियां दा फोन आ चुका कान च मैनू, शुगर 13-7 पे चली गई है
1: ना। ते ए तुसी टेलीफोन किथे
2: लवाया? बस साडा डायरेक्ट कनेक्शन है, यही तो गल है ना, तुम समझ नहीं सकते हो ना, इन्होंने लोगों को समझ नहीं, साढ़े को 5-6 साल हो गए, डायरेक्ट कनेक्शन है, गद्दी एवं नहीं लाई।
1: अल्लाह जी। तो समीन और नाजरीन हमारे इस बाबे फूके दियाँ फूकों में जरा फोन भी कर सकते हो।

0: उनका साहब से जो है वो मशवरा लेंगे, उनका तजिया लेंगे कि वो क्या समझते हैं। बाबा फुका साहब, जो डेनमार्क में जिंदगी कैसी है?
1: बड़ा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने दाना पानी जिथे लिखे है फिर उधर गुजारा तो करना पड़ता है, लेकिन और जगहों से बेहतर है। बस असी खा पी रहे हैं, शुक्र अल्लाह ताला गुजार रहे
0: हैं। ए बाबा जी, पाकिस्तान तुहाड़ी कितनी कोठियां ने?
1: उन सारे ना ना पोल खुलाओ।
0: नहीं कहंदे ना गद्दी रखी हुई है, तो मैं क्या शायद पूछ लई है।
1: बस उत्थे हैं चार पांच गद्दियां उधर भी हैं।
0: एथू बैठ के फूक मार दे हो?
1: हां जी क्यों नहीं, फूक के हवा है ना, हवा नाल टूट जांदी
0: है। ए स्काइप ते लाइव सेशन चलदे
1: ने? ना जी, पीआईए दा जहाज जांदा उधर, पीछे फूक मारने फूक ना लै जांदा। नीयत आपकी सही हो ना तो मंजिलें आसान होती हैं। देखे एक गद्दी थी, पांच छह सालों में चार पांच हो गई। अभी आगे देखे और कितनी गद्दियां लगती हैं।
0: ये सारे भ्रावण पाकिस्तान बन
1: छड़ियां दे? नहीं कोई, बस चेले चूले हैं अपने उत्थे बैठे, ਉਹ ਵੀ ਕੁਪੰਗੇ ਚੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
0: ਚੇਲੇ ਵੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ?
1: ਸਾਜੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਨੇ ਅਗਰ ਖੂਹ ਮੇ ਚਿੱਲਾ ਨਾ ਕਾਟਾ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾਪੁਰਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ।
0: ਇਹ ਵੈਸੇ ਚਿੱਟਾਪੁਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ?
1: ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪੂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਚਿੱਟਾਪੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾਪੁਰਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਸਪੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, फ़ायदा कोई नहीं। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। सस्पेंस जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लेके आता है।
0: अच्छा बाबा फुका साहब, आपको ना फेसबुक पे बड़े लोग देख रहे हैं इस वक्त।
1: अच्छा, अल्लाह खैर करे।
0: जी जी जी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे?
1: यही मैसेज कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करो, बुरा इस्तेमाल ना किया करो, बाबे फूके को देखा करो, मैसेज करो अभी कोई फूक मरवा।
0: चंगा इस्तेमाल है बाबे फूके को देखना,
1: तो और की एडी वड्डी हस्ती सामने बैठी लाइव फ्री
0: लाइव,
1: वैसे लोग लेना लग गए तो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ।
0: ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੋਬਾਈਲ ਪੇ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2181 36 33, ਉਸ ਪੇ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹਸਬੇ ਤੋਲੀ ਤੋਫੀਕ 1 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਭੇਜ ਸਕਤੇ ਹੈ।
1: ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨਾ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੋ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, इतना तो भेज दो। 10 लाख ना भेजो, 5 लाख ना भेजो, बेशक 55 करोड़ का एक जबरदस्त शवारमा मेन्यू आता है, बाबा फूका उसे खुश हो जाता है। बस इतना कम से कम भेज दो, अगर करना है कुछ तो करना है, तो उसके बदले आपको 3-4 फूके फ्री।
0: नहीं बाबा फूका जी, नंबर मैंने अपना दिया है
1: जी।
0: चार
1: गद्दियां ला के दित्तियां ने, असीं तां बस उहदा नाम लैंदे आं ते अगे निकल जांदे आं। कई लोग पाकिस्तान च कित्थों तू कित्थे पहुंच गए, नहीं सी तेरे दीआं गल्लां कर कर के ते असीं क्यों पिछे रही। फूक मारना कोई आसान काम है? ਚੰਗਾ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ।
0: ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ
1: ਕਿੱਥੇ?
0: ਇੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ।
1: ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਕੋਠੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ।
0: ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ?
1: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।
0: ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪੀਰ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਮਾ
1: ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਖੋ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੂਜ ਫਿਰ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ।
0: अच्छा बाबा जी, आप डेनमार्क में लोगों की ज़िंदगी किस तरह देखते हैं?
1: डेनमार्क में लोगों की ज़िंदगी मैं समझता हूँ, इधर यूरोप की ज़िंदगी जो इन जनरल है ना वो है रोबोट वाली ज़िंदगी। मतलब हमारा जो है ना एक ही चीज़ है, सुबह उठो काम पे जाओ, काम से वापस घर आओ, उसके बाद अगर टाइम है तो बच्चे उठाओ, बच्चे ना उठाओ तो घर आके बीवी की सुनो, खाना खाओ और आप सो जाओ, और सुबह उठ के दोबारा इसी रूटीन पे दोबारा शुरू हो। इसीलिए तो बाबा फूका आया है, इन्हें बदलना है, ऐसी लोगों को हंसाना है, लोगों को उनकी टेंशनें भुलानी है, फूके मरवानी है, टेंशन ख़त्म करनी है। और मैं अपना संडे इतने कुर्बान करा करांगा लोगों वास्ते फी सबीलिल्लाह। नहीं चलो अगर शवारमे तो पैसे दे दे,
0: میں دیکھنا ذرا میرے موبائل پہ کتنے آئے.
1: پاکستانی قوم کنجوس ہے, اتنی جلدی نہیں بھیج دی بابے فوکو نو. پہلو نا تھوڑا سا ان کا بھروسہ جیتنا پڑے گا پہلے. ابھی تو پہلی بار انہوں نے دیکھا ہے, آہستہ آہستہ یقین کریں گے, پھر اس کے بعد دیکھنا آپ خود ڈالیں گے.

0: लो बाबा जी, फिर चमकीली का कमाल देखें कि उसने क्या कहती है कि चमकीली जो है वो खुद अपनी बारात लेके आई है।
1: बताओ बताओ
0: बाबा जी, ये जब हम गाना सुन रहे थे
1: जी,
0: तो एक कॉल आई है।
1: कॉल आई है।
0: कॉल आई
1: वाह
0: है।
1: जी वाह।
0: अच्छा, कॉल वाले कहते हैं कि यार ये जो वो उसका चमकीली के साथ जो है ना कोई कनेक्शन है,
1: ठीक है,
0: वो कहते हैं कि मैं रणमरीद होने का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ।
1: वाह क्या
0: तो
1: बात,
0: वो कह रहे
1: क्या
0: थे कि
1: बात
0: जी
1: है, बड़े
0: बाबा फूका साहब से कहें कि जो थोड़ी सी जो है ना हमें दुआ करें, कोई फूक मारे कि उनका भी ब्याह हो जाए।
1: अच्छा, ब्याह होया ही नहीं थे पहले ही, रणमरीत
0: नहीं, वो बनना चाहते हैं ना, वो शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके वालदैन जो है वो उनकी शादी जो अभी नहीं करना चाहते।
1: हाय हाय, क्या ज्यादती कर रहे हैं उसके वालदैन, इतने नेक ख्यालात रखने वाला लड़का, क्या
0: अच्छा, और उनका
1: बात।
0: पता है क्या कहना है उसके, क्या बता रहा था, कहता है कि मेरे वालदैन कहते हैं कि ना तुमने अभी तालीम हासिल की है, ठीक है, ना तुम्हारे पास कोई काम है, ना
1: बिल्कुल,
0: कोई रहने की जगह है,
1: वाह
0: तो तुम शादी करके उस गरीब बच्ची की जो है वो भी जिंदगी खराब करोगे।
1: नहीं, क्यों खराब कर रहा है जी, ये तो पाकिस्तानियों का दस्तूर है ना, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी है ये तो।
0: उसके माँ बाप या वो
1: नहीं,
0: लड़का,
1: लड़का वेला निकम्मा, ना कोई काम ना काज, ना खुद पता है कि रोटी कितू खानी है, ते बीवी ले आके तो सिर पे बिठा दो, ये तो सही ओरिजिनल पाकिस्तानी लोग हैं। सॉरी, सोच उसकी, वालदैन तो फिर समझदार है नजर आ रहा है, लेकिन लड़का तो मैं कहना 2 मिनट है तस्वीर घुमाने होने, या अल्लाह मिला दे यार इन्हू जी कुड़ी जो है, जो साढ़े लोग कहते हैं ना कि लड़के की शादी कर दो तो उसको अकल आ जाएगी, उन्होंने वह जिंदगी भर आई नहीं तो इन्हू आ जाएगी शादी तो बाद, तो चलो मैं
0: अच्छा
1: कहना शादी कराओ दी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दुआ करनी है जी अल्लाह ताला करे या अल्लाह मुंडे का ब्याह करा दे,
0: जो है वो सर्टिफिकेट दे दिलवा दे।
1: वो ऑटो ऑटोमेटिक लाभ जाएगा, वो तो सब भी असी खू ए तो वो तो ऐसा एक तालाब है जिसे सब लंघे हैं उसके बीच, कोई गल नहीं, वो तो ऑटोमेटिक लाभ जाएगा, उसको कहें कि इस चीज़ का खौफ ना करे, रणमरीत तो इंसान ऑटोमेटिक हो ही जाता है, एक ना एक दिन ऐसा आता है जब बीवी कदमों में बैठना पड़ता है, ये तो सब बाबा जी भी इस चीज़ को लंघे ने, कोई मसला नहीं, हालांकि मेरी दो दो नहीं है, एक ही सॉरी,
0: ए लंगे ना या लंगते पे ना,
1: नहीं मैं लंघ चुके हैं, लंघ चुके हैं
0: यानी उन बाबा
1: यार, गल बाबा मुंडे दी हो रही, तुसी फिर बाबा विच पा दे, 2 मिनट दुआ कर रहे, क्या बात है यार,
0: आप।
1: वाह वाह जी, हैं
0: की होया बाबा जी,
1: ओए ओए ओए ओए,
0: की अल्लाह।
1: कनेक्शन हो गया, कनेक्शन 2 मिनट विच टोकना नहीं, वाह क्या बात, और तू कॉल इस चीज दी आई है कि
0: जी
1: लोग कह
0: जी
1: रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि लड़के की शादी करा दो तो उसको अकल आ जाएगी, ये क्यों करते हैं, उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं है वैसे, वैसे बंदा अगर गौर से सोचे
0: जी
1: कि जो लड़का माशाल्लाह पहले से ही इनरिस्पॉन्सिबल है, ना अभी तक वो नौकरी कोई सही कर रहा है, ना उसके पास कोई घर है, ना उसके पास कोई जगह है रहने की सही तरीके, मतलब या इस तरह की चीज़ें, तो ये कौन कहता है कि शादी करने के बाद उस इंसान को अकल आ जाएगी, ये पता नहीं हमारे इस कल्चर में, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी कल्चर में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत है, आप उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर रहे वैसे, क्या आपने उसको एक ऐसे लड़के के पास भेजे जिसको अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब वो अपनी जगह पे अपनी स्टेबिलिटी पे आया ही नहीं, तो आपने उसकी शादी करा के जो है ना उसको,
0: ना तो बाबा जी, पर जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं तो फिर बंदा सीधा नहीं
1: हर
0: होता।
1: इंसान ही ना होता, हर इंसान नहीं होता,
0: अच्छा, हर
1: हर इंसान नहीं होता, हर इंसान को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी होती कि उसको समझ लग जाए कि मेरे ऊपर ये एक जिम्मेदारी पड़ गई है, मेरे ये जो घर एक बीवी है अब मेरी, ये किसी की बेटी है अब इसकी जिम्मेदारी मेरी, ये जो है ना अल्लाह तौफीक हर इंसान को नहीं देता कि उसको ये अक्ल हो, तो मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट गलत, तो जड़ा ना सी
0: कॉन्सेप्ट ही गलत है
1: कॉन्सेप्ट ही गलत है
0: ना, तो
1: लड़के,
0: जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी जो करवाई थी या हमने जिनकी करवाई है तो उनका क्या
1: वो
0: होगा।
1: जमाना और था, मैं इस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने और इस जमाने में बहुत फर्क है जनाब, पीरो मुर्शिद तुहानू पता है उस टाइम 1.5 रुपए की या कुछ दी फैंटा दी बोतल लभदी सी,
0: दादी किन्ने दी लभदी है,
1: मैं फैंटा दी बोतल नहीं पता, खमीरी रोटी पर रखा था 50 रुपए की है भी इस तरह कुछ, ते मतलब खमीरी रोटी 50 रुपए की है, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया,
0: जमाना खराब है, दगा नहीं। अच्छा नहीं,
1: नहीं ज्यादती ना
0: जी
1: करो ना मेरे
0: जी
1: करना नाल, ज्यादती ना करो
0: जी जी जी अच्छा बाबा फूका साहब, अभी भी हमें जो है ना वो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो थोड़े टिके हुए हैं।
1: ठीक है, टिके रहे, कोई मसला नहीं,
0: यानी कि
1: माड़ी चीज नहीं देख रहे।
0: मुझे तो शक है घर वाले ना
1: हो, तो घर वाले हो, कोई मसला नहीं। अच्छा। कोई मसला नहीं, घर वाले डेली भी फूका पैंदियां ने, तू भी फूका पै जानी, कोई मसला नहीं,
0: कोई मसला
1: नहीं। ना जी, ये रन मरीदी का जो कॉन्सेप्ट
0: है, नजरी अभी ये जो हमें जो कॉल आई थी कि वो रन मरीदी का जो है सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 3321-2984। आप अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो लड़का ना खट्टू होता है, ना पढ़े है, ना लिखे है, और उसके माँ बाप। अच्छा बाबा फूका साहब, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, उस लड़के को जो ना खट्टू होता है ना, ना पढ़ा लिखा होता है, ना काम होता है, ना उसके पास घर होता है, अच्छा उसके लिए लड़की देखते हैं कौन सी सोनी, ठीक है, पढ़ी लिखी और जो काम भी करती हो। अल्लाह
1: वाह, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा या अल्लाह माफ।
0: है ना कमाल,
1: कमाल है ना, यही तो गल है ना, दो ऑपोजिट चीज़ें तुम मिला रहे हो आपस में, मतलब अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है, ताई तो बाबा बनया मैं लोगों को अकल दिलाने वास्ते, कि लोग समझ जान दुनिया का दस्तूर की है, सिस्टम की है, क्यों ज्यादतियाँ कर दे अपने बच्चों नाल, अपनियाँ धियां नाल। नखट्टू नू मारो लत, दसो कि नखट्टू है, जिम्मेदार पहले उन्हें बढ़ाओ, फिर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दवो कि वो किसी और बंदे की जान की हिफाजत कर सके।
0: अच्छा ये जो खास तौर पे नखट्टू बच्चे होते हैं ना
1: जी,
0: लड़के खास तौर पे
1: जी,
0: अच्छा ये माओं के बड़े प्यारे होते हैं,
1: मावा तो खराब कर दिया ने, मावा तो पा लम्बा लेना चाहिए। मैं कहना उन्होंने भी धरू, सब तो ज्यादा तस्वीर मैं इन्होंने मावा तो फेरागा जड़िया जड़े ना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर दिया ने।
0: नहीं कि लम्या किसको डालना था, लड़के को या
1: ना जी मां नु, एथे तस्बीह फेरी तको राती बैठ दो, आज राती पांच मावां टवण गियां, पांच तस्बीहां फेरियां ने, कोई टेंशन नहीं,
0: अल्लाह खैर करे
1: ऑटोमेटिकली, क्योंकि तस्बीह दा तल्लक उस नाल ना, ओ आपू पहुंच जांदी उस मां कोल जिहड़ी अपने बच्चे नु फजूल च प्रोटेक्ट करदी। क्रिस्टन मुंडे नु लत पैण वाली हुंदी है ना, ते आ जांदी अगे शील्ड बन के कैप्टन अमेरिका, यह जो मावं ज्यादा कर दें उस बच्चे प्रोग्रेस कर नहीं दिदियाँ, अपना मिलो ला ला मिलो बच्चा मिलो न्यूनी न्यूनी करके घोर रखा हों, दोबारा रिपीट ना ना कराओ चाचू, पीर साहब की कर रहे हो यार, की कर रहे हो, एक बार हो गया मेरा प्यारा मेरा लाल मेरा नूनी मेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उन्होंने इस तरह कर करके ना बढ़ा लेंदी है।
0: मेरा पुत्र तो इस तरह का है ही, बड़ा अच्छा है, बड़ा,
1: हाँ जी कबीर की वो आँच नहीं आने देती कोई इंसान, इल्ज़ाम तो उस पर लगाए ना पहले, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाए, सबके सामने उसको प्रोटेक्ट करेंगी, उसको ये वो कॉन्सिक्वेंस उस पर आने नहीं देंगी कि भाई उनको पता चले कि उन्होंने क्या गलत किया क्या सही नहीं। हाँ कल्याँ बह के उन्होंने भावें चार जुतियाँ ला लो वो बेहतर, लेकिन लोगों के सामने होते आँच नहीं आने देनी, जबकि दुनिया ही आपकी सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है, जिस टाइम लाइव आपको लोग कहेंगे कि ये आपने गलत किया या आपने ज़्यादती किया ये कुछ, तो उससे इंसान सीखता है। लेकिन साड़ियाँ मावं आ जाएं ने फीडर लैग, ये लो जी बेटा पियो नीडो।
0: लेकिन लेकिन क्या बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए भी नहीं अच्छा होता कि उसके उसको भी पता होता है कि मेरे पीछे मेरी माँ या मेरा बाप खड़े हैं जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं।
1: सपोर्ट करो उधर करो जिधर बननी चाहिए, लेकिन जिधर आपका बच्चा गलत है उधर उसको कहो कि वो बच्चा गलत, कोई मसला नहीं है, ये भी एक चीज़ मतलब उसके कॉन्फिडेंस में है, उसको पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ मैंने गलत की है, दोबारा आइंदा मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए।
0: तो आपका कहना है कि हर चार पांच माहें तो जो है वो
1: मैं कन्फर्म टवण गया तुम्हें, तो क्यों अगले प्रोग्राम से सू फोन आएगा कि मैं टठी हाँ मैं टठी हाँ तो मैं भी टठी हाँ, तो एक तो नील भी पेगा, ये कन्फर्म है, मैं उत्तू दस रही हूँ तस्वीर का दाना दस रहा मैं, एक नील पवेगा तो मैं ये भी दस सकना कितने पवेगा, लेकिन चलो आपस रखने कोई गल नहीं।
0: अल्लाह यानी कि इतना सख्त अजाब है ये,
1: क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों प्रोटेक्ट करते हो,
0: तो फिर क्या करे वो माँ उसका,
1: मारे उसको लात खुद, उन्हें कहे जी तूने गलत किया ही है, इंसान बन तब वो जिम्मेदार बनेगा ना, नहीं तो वो जिम्मेदार कैसे बनेगा, जब हर बार वो कोई गलती करता है उसके आगे शील्ड बन के आके उसको प्रोटेक्ट करोगे, तो मेरा बस चले तो मैं उस तू वड्डी तस्बीह ले के तो शील्ड ही पान दवा।
0: अच्छा वैसे पता है क्या मेरा जो मानना है ना कि जब हमारे लड़के खास तौर पे, क्योंकि लड़के अब तो पता नहीं शायद ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन जब हम छोटे थे ना बाबा फूका साहब, तो लड़कियां जब घर आती थी ना स्कूल से, उन्होंने आके बर्तन भी धोने हैं, उन्होंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं, उन्होंने हर काम घर का करना, लड़का जो है वो जनाब चौधरी साहब का पुत्र है आ रहा है
1: ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ,
0: ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਟੇਬਲ ਪੇ,
1: ਯਾ
0: ਤੋ ਜਬ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਨਾ,
1: ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇ।
0: ਆਏ ਹਾਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਵੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ।
1: ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਵੋ ਤੋ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਬ 15-16-17 ਸਾਲ ਕਾ ਹੋ ਨਾ, ਉਸਕੋ ਕਾਮ ਪੇ ਲਗਾਏ।
1: ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਏ।
0: ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ
1: ਉਹ ਤੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਡਾਡਾ ਪਰਨੇ ਚ ਫਸ ਗਈ।
0: ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ,
1: ਉਹ ਜਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾ, ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ।
0: ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਦਿਲਵਾਏ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਵਾਏ,
0: ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਫੋਨ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਮੰਗਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਮੰਗਤੇ ਹੈ,
1: ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਖੇਡਦਾ ਹੈ
0: ਤੇ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ,
1: ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵੋ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਕੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਜੋ ਮੁਝੇ ਫੋਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਔਰ ਕਿਸ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਵੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ।
1: ਆਈ ਅਗਰੀ ਔਨ ਦੈਟ,
0: ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜੋ ਮਾਂ ਗਿਰੇਗੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਸੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਵੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ,
1: ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਟਹਿਗੀ ਤੋ ਕਾ ਇਤਨਾ,
0: ਓਏ
1: ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਟਹਿਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਟਹਿਗੀ।
0: ਅੱਲਾਹ,
1: ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਟਹਿਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਟਹਿਗੀ।
0: ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀਂ ਪੇ, ਕੋਈ ਨੈਟੋ ਮੇ ਹੋ ਯਾ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਮੇ ਹੋ ਯਾ,
1: ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ,
0: ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ,
1: ਕਾਬਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣਨ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਇਕੱਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਟਵਣਗੇ।
0: ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ
1: ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,
0: ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ
1: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹ,
0: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹ,
1: ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ,
0: ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ,
1: ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ।
0: ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏਗਾ,
1: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ,
0: ਨਾ
1: ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ,
0: ਇਨਾ ਇੱਥੇ ਫਾਕੇ ਕਰੋਗੇ।
1: ਚਲੋ ਖੈਰ ਯਾਰ, ਫਾਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ
0: ਜੀ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਏਕ ਸੇ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੀਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਪਿਕ, ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੋ ਹਮੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਰਨ ਮਰੀਦੀ ਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਟੋਪਿਕ ਹੋਂਗੇ ਜਿਸਪੇ ਹਮ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸੀ ਗਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਹਮ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਉਸਕੋ ਆਪ ਹੱਸਤੇ ਖੇਲਤੇ
1: ਬਾਬੇ ਦੀ ਭੂਖ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਨੀਲ ਪੈਣਗੇ, ਨੀਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾਹ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਨਿਕਾ ਜਾ, ਤੱਕਿਓ ਤੱਕਿਓ ਕਿਧਰੇ
0: ਜੀ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਆਪਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ, ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ?
1: ਬਸ ਯਹੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੀਏ, ਟੈਨਸ਼ਨੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਲੱਗੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ
0: ਜੀ। ਸਾਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਿਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰ। ਤੋ ਸਾਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਥਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮ ਇੱਕ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ। جس کا ہوسٹ میں رضا مصطفیٰ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب ڈینش صاحب، بابا فوکا صاحب جو ہیں وہ پیر صاحب ہوں گے، جو ہمیں اپنے مشوروں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی پھوکوں سے جو ہے وہ نوازتے رہیں گے۔ تو اگلے اتوار تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ آپ کا آنے والا ہفتہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و پیش کا، لوگوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ پاکستان زندہ باد، ڈنمارک پائندہ باد۔ آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنیپلائے۔